0: rapat dan memutuskan sendiri siapa pihak yang akan diberangkatkan.
1: Lah bahwa itu sebagai kader bisa, tapi kalau sebagai ketua MPR berbeda. Jadi kalau soal itu aku belum dapat informasi.
2: Kalau sesuai peraturan, kemudian pimpinan MPR rapat. Ya, kemudian dari pimpinan MPR rapat memutuskan mau pertimbangan ini, maka kita tak siap sama. Bahwa presiden dan ketua MPR statusnya dalam rapat sifatnya konsultatif.
0: Di hari yang sama, Selasa sore, Ketua MPR Ahmad Muzani melakukan klarifikasi yang menjelaskan lawatannya ke Iran bukan sebagai Ketua MPR, tetapi sebagai utusan khusus negara.
3: Ya, memang saya dihubungi oleh Menteri Luar Negeri bahwa Presiden meminta kami untuk mewakili rakyat dan bangsa Indonesia untuk bisa datang ke Iran menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Saya diminta berangkat mewakili, pada saat itu nggak terlalu jelas, tadi diminta untuk mewakili bangsa Indonesia dan pemerintah untuk berangkat ke Iran dalam upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
4: Berarti sebagai utusan khusus presiden, Pak, berangkatnya, Pak?
3: Sebagai utusan khusus presiden. Ya, sebagai utusan khusus presiden.
0: Unggahan tersebut hingga Selasa malam sudah dikomentari 2.538 komentar dan disebarkan sebanyak 345 kali di Instagram. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, menikmati libur panjang sekolah, sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat, ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur ada sebuah warung bernuansa Jawa kekinian yang menyajikan bermacam kuliner unik dari bahan serba daging unggas seperti nasi dengkul, ayam kraton, serta bebek bengawan. Penasaran seperti apa rasanya? Berikut liputannya.
0: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Palabuhan Ratu Geopark Ciletuh Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan Laut Lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
6: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak ke sekolah aja lebih panjang.
7: Tadi rasanya bagaimana?
6: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
0: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau. Pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati.
8: Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Your Excellency, Prime Minister Narendra Modi, and the India delegation, all of the Indian community in Indonesia, members of the Indonesian government, from the provincial government, namaskar. Hari ini, saya berkesempatan mendampingi Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi, mengunjungi Candi Prambanan, salah satu mahakarya peradaban dunia, sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan tidak hanya bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan dunia.
7: Maninya Bharat ke Pradhan Mantri Shri Narendra Modi Ji, Indonesia aur Bharat ke pratishtit pratinidhi, Indonesia mein rehne wale Bharatiya samudaya ki sabhi sadasya, mahilao aur sajano, namaskar. Aaj mujhe Maninya Bharat ke Pradhan Mantri Shri Narendra Modi Ji ke saath Prambanan Mandir ka daura karne ka avsar prapt hua hai. ये विश्व की महान सभ्यता की एक अद्भुत कृति है और दोनों देशों की इंडोनेशिया और इंडिया की सांस्कृतिक विरासत पर दोनों देशों का गर्व है.
8: Kunjungan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1000 tahun.
7: Ye yatra hamare liye bahut hi vishesh mahatva rakhti hai. Prambanan Mandir keval Indonesia ke itihas aur sanskriti ki mahanta ka pratik ही नहीं है, बल्कि ये इंडोनेशिया और भारत के बीच 1000 वर्ष से भी अधिक पुराने सभ्यता संबंधों की याद दिलाता है.
8: Hubungan kedua bangsa tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan, tapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan saling menghormati antara sesama. Jejak sejarah tersebut masih dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini.
7: Hamare dono desho ke sambandh keval rajnitik, artik, aur raksha sahyog tak simit nahi hai. Ye sambandh sanskritik mulyo, gyan vigyan, व्यापार और परस्पर समन की मजबूत बुनियाद पर आधारित है. इस समृद्ध इतिहास के निशान हम आज भी देख और महसूस कर सकते हैं.
8: Candi Prambanan bukan hanya sekedar bangunan sejarah. Ia adalah simbol peradaban besar Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan kemanusiaan.
7: Prambanan Mandir sirf ek aitihasik imarat hi nahi hai, balki ye gyan adyatam ko bhi prakat karte hai.
8: Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia dan bangsa India, karena relief kisah Ramayana yang terukir di dinding-dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa kita.
7: Prambanan Mandir bahut hi mahatvapurna hai dono desho Indonesia aur Bharat ke liye, kyunki isme रामायण की कहानी इसकी दीवारों पर उखरी गई है.
8: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
7: Mujhe pura vishwas hai ki ye yatra Indonesia aur Bharat ke logo ke beech mitrata ko aur adhik mazboot karegi. Sanskriti ek aisa pul hai jo desho ko jorti hai. एक दूसरे को बढ़ावा देती है और हमारे भविष्य के लिए विश्वास का निर्माण करती है।
8: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyambut baik kesepakatan konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik India.
7: Is avsar pe jo conservation or restoration ho rahi hai Candi Prambanan ke दोनों देशों के बीच में इंडोनेशिया और इंडिया के साथ हो रही है।
8: Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas kunjungan kenegaraannya di Indonesia kali ini selama 3 hari. Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin kokoh, semakin erat, dan terus menghasilkan kerjasama yang nyata serta saling menguntungkan bagi kedua negara dan kedua rakyat kita. Terima kasih.
7: Indonesia ki sarkar aur Indonesia ke logo ki or se मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंडोनेशिया की 3 दिन की राजकीय यात्रा के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी कामना है कि इंडोनेशिया और भारत की मित्रता और अधिक मजबूत हो और गहरी हो और हमारे बीच का सहयोग दोनों देशों के लिए वास्तविक और परस्पर लाभदायक परिणाम देता रहे। धन्यवाद।
8: धन्यवाद।
9: Next, we kindly invite the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi, to deliver his press statement.
10: मेरे परम मित्र और इंडोनेशिया के लोकप्रिय राष्ट्रपति प्रबोवो जी, उनके साथ यहाँ आए हुए मंत्रिपरिषद के सभी वरिष्ठ साथी, इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, भाई मेरा सद्भाग्य है, कहीं न कहीं मुझे शिवजी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वडनगर में हुआ, हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है, और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला, मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं।
11: रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, माय डियर फ्रेंड प्रबोवो जी and all the members of the ministers who have joined us today. It has been a great privilege and a matter of great fortune for me that in my life I've had several moments where I've had the opportunity to connect with Lord Shiva. I was born in Vadnagar in Gujarat, which is home to a very famous Harkareshwar temple in Gujarat. also in Somnath, Gujarat also is home to Somnath Temple, the first of the Jyotirlingas. And I personally have undertaken the responsibility to redevelop that temple. And my political arena, my constituency of Kashi, is also home to Kashi Vishwanath. And I have been privileged to enjoy the blessings of Kashi Vishwanath. I have also been personally involved in the redevelopment and restoration of Kedarnath Temple, Ujjain Mahakal Temple. And today, at this very holy venue, where the presence of Brahma, Lord Brahma, Lord Vishnu, and Lord Shiva have blessed us for 1,000 or 1,200 years, this is a venue that displays the shared cultural heritage between our two nations. I am also extremely privileged with my dear friend to begin the process of restoration of this magnificent temple complex. Thank you very much for this opportunity.
10: Mere liye bahut sukhad anubhav raha. Meri yatra ka aaj teesra divas hai. Lekin yahan ke jeevan mein, yahan ki baaton mein, yahan ki hawa mein ek sanskriti ki khushbu hai. Wo khushbu jo hum Bharat ki dharti par पल पल अनुभव करते हैं ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं
11: दिस इज माय थर्ड डे हियर इन इंडोनेशिया ड्यूरिंग माय थ्री डे विजिट आई हैव हैड अ वेरी वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस स्टेइंग हियर आई कुड फील द फ्रेग्रेंस ऑफ द लाइफ द लाइवलीनेस ऑफ द पीपल The cultural heritage of this nation, the cultural heritage of this nation reminds us of the fragrance of cultural heritage that we have back home in India. And it is this cultural heritage that joins our two nations together. And for over 1,200 years, the people of this land have preserved this cultural heritage with commitment, perseverance, and devotion. I would like to thank all the citizens of this country for preserving this cultural heritage and all the governments and administrators who have made contributions in this regard.
10: Agar main Lhasa mein Kailas Mansarovar ki yatra karta hu ya aur aaj main Indonesia ke is pavitra temple mein aata hu main dekh raha tha ek hi gunj Mahamrutyunjay jap yahan ho raha tha ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था यह अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था
11: वेदर इट इज डूइंग द कैलाश मानसरोवर यात्रा इन लासा और कमिंग हियर इन दिस सेक्रेट टेंपल हियर इन इंडोनेशिया आई कुड हियर द सेक्रेट मंत्रास ऑफ मृत्युंजय रिवर्बरेट ओम नमः शिवाय रिवर्बरेट दिस इज आवर शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज
10: और मैं देख रहा हूं कि योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे मेरा पूरा विश्वास है
11: एंड इन योग्यकर्ता टेंपल दिस टेंपल मैग्निफिसेंट टेंपल कॉम्प्लेक्स We are undertaking the renovation work. This is also a UNESCO World Heritage Site. I can assure you, after our joint efforts at renovation, the number of tourists and devotees from India will grow exponentially in the times to come.
10: दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं. ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है.
11: And whenever we travel across the world, we can see glimpses of Indian culture and heritage. Today, here I've had the privilege of offering prayers at South

0: sacred idols of Lord Shiva, Goddess Durga, and Lord Ganesha. For centuries, devotees have worshipped here with deep faith and devotion. Today, I too had the privilege of offering prayers in the most traditional manner and in offering my respects in this sacred temple. This has been one of the most sacred, one of the most remarkable and devotional moments of my life.
1: Mitra President Prabhuji, उनके साथ यहाँ आने से ये आयोजन मेरे लिए विशेष हो गया है.
0: This occasion,
1: मैंने यहाँ ईश्वर से भारत इंडोनेशिया की मित्रता को मजबूत करने, हम दोनों देशों के नागरिकों के कल्याण और दोनों देशों के तेज विकास के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है, भक्ति भाव से पूजा की है.
0: This occasion is even more special because I had the opportunity to visit this sacred temple complex along with my dear friend, President Prabowo. I prayed here for the stronger ties between India and Indonesia, for strengthening the friendship amongst our people, for the well-being of the people of our countries, and for the rapid progress and prosperity of our two nations.
1: मुझे पूरा विश्वास है. मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे. और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है. मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहाँ आऊँगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा.
0: टुडे एंड आई वुड लाइक टू कन्वे दैट प्रेसिडेंट प्रभो बीइंग अ सोल्जर हिमसेल्फ, ही नोज हाउ टू प्लान थिंग्स. सो व्हेन ही हैज प्लान दिस रेस्टोरेशन, देयर इज अ क्लियर स्ट्रेटजी, एंड विद दिस प्लानिंग आई एम श्योर दैट द रेस्टोरेशन वर्क विल हैपन अहेड ऑफ टाइम. एंड टुडे my friend President Prabowo also made me promise him that we will finish this work before 2029, and I need to make a return visit once again to Indonesia to inaugurate the temple complex after restoration. And in front of all of you, let me reiterate my promise: with our joint efforts, we will finish this work before 2029.